0: மீடியா கபூலி 96 எட்டில் ஹிந்தி பாடல்.
1: You're listening to Hindi numbers on only 96.8.
2: So finally, कभी I love you नहीं बोलना है, right?
3: Right.
2: Cool. वैसे never say I love you को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
3: Nadi
2: jamais je t'aime. Nadi jamais je t'aime. Ah, it's so sexy.